मुख लेंगे साहित्य लॉयड्रेगो अनि रोशन क्रास्ता, संगीत विनिल वेगस, गायले ले जावना साथ प्रजुत डेसा, गीत चिंतनान एताई।

0: खुशी खजाने विद आरजे अर्शिता शीला। खुशी खजाने
1: न्यू केलता इदिरा 90.4 FM रेडियो निनादा इदु जनमनदा नाद तरंगा।